0: What do you do to help others feel they belong here?
1: आपने अभी तक क्या किया है और क्या कर सकते हो दूसरे के लिए? मेरे लिए दूसरों से मिलना बहुत जरूरी है. मेरे लिए मेरे दोस्त सेलेसा और उसके परिवार है जिसने बहुत मदद किया आज तक और अभी भी कर रहे हैं. उसके लिए उनको बहुत बहुत शुक्रिया. For me, it is very important that I meet others in the community. And I would also like to thank my friend Salesa and her family for every help they've given me. Thank you very much.